0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज़ हर कदम। अॼु वेजे स्टोर तां नालो।

0: अच्छी खरीद करे हो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: भूल तो नहीं है, वो पदार्थ पूछते कुछ दूर हो जाते हैं।
1: ओके ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम सुनते हैं मेरा?
0: बिल्कुल प्रोग्राम मैं सुन पा रहा हूँ गाड़ी में, और थोड़ा ब्रेक लगा और मैंने पाँच पहले नंबर में कॉल करते हैं।
1: ओके कॉल करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि हाँ प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और हमारा सेगमेंट भी है गाना सुनाने वाला, तो कोई गाना है जहन में सुनाने के लिए?
0: तो गाना तो सुनाना जरूरी है ना?
1: हाँ जी गाना गाना सुनाना जरूरी है।
0: मेहदी हसन की आवाज में गाना है रास्ता।

0: आग में ना हो गए
1: किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: ये अली उमर तो मेरे दोस्त चोट भी रहे रेडिएशन की आवाज का, और मैं कहता हूँ कि वो मैं मुझे बहुत याद करते हैं आपके प्रोग्राम में विधु, और अल्लाह आपको खुश रखे, ऐसी आवाज और ऐसी सारी सी हमारी आपको बहुत खुश रहे और बहुत याद करते हैं।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये रहा आपका गाना।

अमेरिका ईरान जी ॻाल्हियुनि खां पहिरियों पाकिस्तान सऊदी अरब मुतहरिक सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर जो ईरानी हमनसिब अब्बासी इराक सां फोन ते राब्तो खिते में जारी चिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो। ज़रियनि मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। मेहर मां पुरसरार नमूने गुम थियल ॿिनि भेनरुनि जो पतो न पियो। वारसनि पारां अगवा जो शक ज़ाहिर। बिस्मिल्ला कॉलोनीअ मां 20 वरनि जी लाइबा 18 वरनि जी रज़िया बिरोही 3 ॾींहनि खां पुरसरार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवणु आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा नाहे। नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़तम कई वञे। चक भरिसां हथियारबंदनि जे खैरपुर वासीअ खां फुर जी कोशिश। हिकु जवाबदार सोघो ॻोठ नापर वटि चक जहान खान रोड ते पुलिस हिकु जवाबदार गाड़ो जतोई खे सोघो करे वरितो। फुर थियल मोटरसाइकिल बि हथ, संदसि साथी फरार। पुलिस चयो आहे त गिरफ़्तार कयल जवाबदार खां जांच जारी आहे।

0: ऐं सिंधी ॿोलीअ जी सभ खां वॾी ऐं मक़बूल तरीन अख़बार रोज़ानी कावस जी अॼु 36 सालगिरह मल्हाई पई वञे। सिंध जे पाणीअ जो मसलो हुजे या वसीलनि जी मालिकीअ जो, रोज़ानी कावश हर मैदान में अॻभरी रहंदे पाण मल्हायो। रोज़ानी कावश सावथ में नवां लाड़ा मुतारिफ़ कराईंदे सिंधी सहाफ़त खे जदीद, तेज़ ऐं बाइतमाद बणाइण में तारीख़ी किरदार अदा कयो। रोज़ानी कावश पंहिंजी शानदार ऐं बेबाक सहाफ़त जा 36 साल कामयाबीअ सां मुकमिल कया। सदाई मिसकीन ऐं बेपोच माण्हुनि जे हक़नि ऐं ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी ऐं बेवाजिबियुनि ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उथारींदी रही आहे।
1: सोलर ऐं
2: बैटरी। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: यार, कुझु ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
4: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
3: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसासु हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: सिंध के माथे का झूमर
6: GFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: sleep.
1: It's 12:15 p.m.
0: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
3: सुनते रहो GFM 90.8.
4: यूसुफ अली शाह BDS MD.

0: जल्द आ रहा है।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ?
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: बहजो शहर, बहजो घर, सकरण, आई सकरण जो आवाज,
3: GFM 90.8।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88.9 पर। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मांथली और मेहरापुर और उसके अलावा लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं और जनाब इसी के साथ साथ आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है पोस्ट को काइंडली लाइक और शेयर कर दिया करें। इसी के साथ साथ जो नंबर्स आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर बताए जा रहे हैं ताकि उनके ऊपर आप रابطہ करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा सके, आपके लिए आसानी हो जाए, समझ रहे? तो जल्दी जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। इसी के साथ साथ मैं जरा आप लोगों को बताने लगी, अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती में किस तरह से इजाफा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को सबसे पहली बात बताती चलूं तो हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों का दिल जो भी करे ना भाई, जो भी प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को जरा बताया जाए तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए नाइट क्रीम भी है, एक्नी ट्यूब भी है, फेयरनेस क्रीम भी है, सोप भी है, फेस वॉश भी है, लोशन भी है और हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। ओके जी, तो ये तमाम प्रोडक्ट जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। ना मिलने की सूरत में जो नंबर आपको बताए जा रहे हैं उनके ऊपर आप रابطہ किया करें, ठीक है, रابطے जो है ना वो बहाल रखा करें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जी जिक्र करें व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का, तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है नो साइड इफेक्ट्स के साथ साथ। अगर आप भी कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि भाई कौन सी ऐसी नाइट क्रीम जो कि हमारे चेहरे पर सूट करेगी, तो आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है जिसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा जनाब। अगर आप अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है और तमाम चीजों से प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसे कि भाई आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आना स्टार्ट हो चुके हैं, आप टीनेजर्स से हो, जैसे टीनेजर्स आप अपनी टीनेजिंग एज में आ जाते तो आपके चेहरे पर एक्नीज आना स्टार्ट हो जाती है, आपके चेहरे पर इतने ज्यादा मोटे मोटे दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जिनको देखकर आप ये कहते हैं कि भाई ये दाने कैसे खत्म हो जाएंगे। और जब इन दानों को खत्म करने की बात आ जाती है तो फिर आप ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर को दिखा लें या फिर डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं तो डॉक्टर आप लोगों को इतनी महंगी महंगी सी दवाइयां देते हैं और इतना हैवी सा कोर्स दे देते हैं जिनको आप ट्राई करने के बाद यकीन जाले कि कुछ अच्छा खासा फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई इन झमेलों में मत पड़ना है और आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है जो कि भाई लाइट वेटेड भी हो और आप लोगों की स्किन के ऊपर फायदा भी छोड़ जाए, तो बिल्कुल आपके पास व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। और अगर एक्नी की बात छिड़ ही चुकी है तो यहाँ पर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लोगों के लिए मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ये भाई मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसके अंदर जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे तैयार किया गया। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लगाएंगे तो क्या आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल जी आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ आपके चेहरे के दाने खत्म होंगे बल्कि आपके चेहरे पर जो ये जिदी निशानात होते हैं, रिंकल्स होते हैं, कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कितना भी पुराना कोई भी निशान जिदी क्यों ना हो, वो रिमूव हो जाएगा जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। ये भाई गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, तो गर्मियों के सीजन में वैसे ही आपके चेहरे पर एक्नीज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हो यकीन जाने इतना शानदार ये ट्यूब है ना, पर्सनली मैं भी खुद भी लगा चुकी हूँ और मुझे जब भी एक्नी हो जाता है तो बस मैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाती हूँ, वो ऐसे गायब हो जाता है। और एक्नी तो क्या, एक्नी का निशान भी गायब हो जाता है। तो यहाँ पर आप भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का यूज कर सकते हैं, लगाने में इतना प्यारा है, इतना ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा जब आप लगाते ही, तो ऐसा कूल कूल सा माहौल बन जाता है। और एक मजे की बात, लगाएंगे किस तरह तो आपको लगाने के तरीकेकार भी समझाती हूँ जरा। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को आप 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, सुबह को लगाएंगे और रात को लगाएंगे। लगाने से पहले अपना फेस वॉश अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए, आपके हाथ अच्छे से क्लीन होने चाहिए। उसके बाद जहां जहां पर एक्नी है, जहां जहां निशान है, जिस जिस चीज को आप रिमूव करना चाहते हैं वहां वहां पर आपने डॉट डॉट की सूरत में इस्तेमाल करना है, ठीक है, पूरे फेस पर नहीं लगाना, बस जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां लगाना है। ओके, हो गया। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये ट्यूब है, मेडिकेटेड फार्मूला है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है। उसके अलावा यहां पर व्हाइटिश लवली क्रीम की जानिब अगर हम आते हैं तो व्हाइटिश
लवली क्रीम की बात मैं जरा आप लोगों को बताऊं, तो व्हाइट इज लवली क्रीम एक फेयरनेस फार्मूला है, फेयरनेस क्रीम है, और इसे नॉर्मल फेयरनेस क्रीम की तरह बिल्कुल भी नहीं तैयार किया गया, क्योंकि इसके अंदर विटामिंस का भरपूर फायदा तो आपको मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को सनस्क्रीन का फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि अलग से आप लोगों को सनस्क्रीन नहीं लेनी पड़ेगी, बस आप लोगों ने व्हाइट इज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर देना है और आप चुटकियों में रेडी शेडी हो जाएंगे। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनके ऊपर फेस पर मेकअप नहीं लगा पाते, या फिर गर्मियों के सीजन में वैसे आप खुद भी मेकअप नहीं लगा पाते हैं, तो बस आपने व्हाइट इज लवली क्रीम का थोड़ा सा मकदार अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी चेहरे की स्किन जो है वो चमकना स्टार्ट हो जाएगी, आपको ग्लो मिल जाएगा और आपकी स्किन की प्रोटेक्शन भी होती रहेगी। तो जल्दी जल्दी से कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब कर लीजिए जो कि आपको लगता है कि ये हमारी स्किन के मुताबिक तैयार किए गए, लेकिन जब आप कोई भी व्हाइट एज के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें ना, तो व्हाइट एज लवली क्रीम को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आप सब लोगों की बेसिक नीड के मुताबिक है, क्योंकि अगर आपके पास कोई फेयरनेस क्रीम नहीं होती है ना, तो उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिए, आपके पॉकेट के अंदर, आपके पर्स के अंदर व्हाइट एज लवली क्रीम होनी ही चाहिए, तो जरूर से इस्तेमाल कीजिए। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप अपना फेस वॉश करके इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी क्रीम अपनी हथेली पर लगाकर उसे अपने चेहरे पर लगा लेंगे, तो आपके चेहरे पर जो है ना आप देखेंगे कि भाई कितना जल्दी अच्छा वाला ग्लो आ चुका है। तो बिल्कुल ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे, व्हाइट एज बस नाम लेकर तलब कीजिएगा, और इसके अलावा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और डायल करते रहिए। ये नंबर बंद मिले तो दूसरा नंबर है 03-12-50-25-907। ये दोनों नंबर्स आप अपने पास सेव कर लिए आपको जो है ना इन नंबर्स के ऊपर रابطہ करना होगा, कॉल या फिर मैसेज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भाईजान आप कहां पर मौजूद हैं और कहां कहां पर वाइट

लोगों के और मैसेजेस में हमारे साथ हजार भाई कहते हैं कि मैं जिन बनकर आता हूँ, आपको हंसाता हूँ, फिर वैसे आप जिन से डरती हो या नहीं मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद नहीं डरूंगी। तो जिन बनकर आएंगे तो मैं हंसूंगी कैसे? मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ये रियल वाला जिन है या फिर हथ सा ठहल जिन आए। क्योंकि मैंने इतनी सारी हॉरर मूवीज देख रखी है ना, मुझे सारा पता है कि एक जिन को रेडी किया जाएगा तो कैसे रेडी किया जाएगा। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर असां ताकी खिलायूं तो कोई असां के छा मिलंदो तवां के बुधाया छदेस बस समझी तो वयो हुंदे। मुझे क्यों अपनी बात पर हंसी आ रही, आप हंसाए ना मुझे। अच्छा दर्द दिल कहती है साफ साफ बोलने के चक्कर में मेरी जिंदगी से आधे लोग साफ हो गए, यही थी दुआ बाबा, बिल्कुल सही था। जो सनाला फुलपोटो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ भाई जन, आप बताएं कैसे हैप्पी। ये थी प्यारा शो, प्यारी आवाज और प्यारी मेरी आरजे सिद्रा मस्कान, थैंक यू हैप्पी गर्ल्स। वासा भाई कहती अदी सिडो असा भी तमाम वांग ड्यूटी जा पक्का आयो पहुंची वयासी, वाह वाह वाह वाह। उदास लड़की आ चुकी है उदासी के साथ साथ और क्या कहती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, बोले इस्लाम अदर, कैसी हो प्यारी आरजे एंड वेलकम मी, आपको वेलकम कहा जाता है स्वीटी। ओके जी इरफान हुसैन मरी बलूच हमारे साथ है, कहते गुड शो थैंक यू। निदड़ी कहती है मैं ताने खाती नहीं मारती हूँ लोगों को, बाकी मुझे सॉन्ग सुनाओ बिलाल सईद का न्यू दूरियां सॉन्ग। ओके आई ट्राई।

बात हो रही है। हाँ जी इश्टिंग कौन कौन पीता है? वैसे एक बात बताऊं, मेरा उस पर क्रश आ ही जाता, बस आने ही वाला था, लेकिन बात ये थी कि मैंने उसे इश्टिंग पीते हुए देख लिया। हाय सत्यानाश हो गया। बिल्कुल आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम, व्हाइटिश लवली क्रीम, या फिर डॉक्टर पिंपल ट्यूब, सोप लगा रहे हैं या फिर फेस वॉश लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बताइए। मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ आज

स्टिकर सैंड कर दिए इतने सारे, में ब्रश करती हूँ भाई, दांत क्या देखेंगे आप मेरे. एग्जैक्टली दम वाले पानी की बात हो रही थी. सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी. बस वो क्या है ना कि समझने वाले समझ जाते. सनावला फिलोपोट्रो भाई कहते नसीब वालों को मिला करते हम सफर, इस दुनिया में बदनसीबों को अक्सर इश्क हो जाता है.

लाइक और शेयर करते रहिए। मोहम्मद मीरन जखलानी भाई चिकअप अबासी मर्सद मौजूद है, खुश आमदी। ये हमारे साथ जी गुलाम फरीद बलोच, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। मैं ये अली भाई के लिए शायरी लिख रहा हूँ। वो दोस्त मेरा थोड़ा नाराज हो गया। हम किसी से रिश्ता तोड़कर तमाशा नहीं बनाते, बस वहाँ खामोशी अख्तियार करते हैं जहाँ अगला अपनी औकात दिखा दे। गुलाम फरीद जागीरानी हमारे साथ। आए हाय, अली भाई को ये राजी कर रहे थे या और ज्यादा नाराज कर रहे थे? क्या बात है। अच्छा, मोतिया से थानी भाई, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जमान भाई, मुझे मिस कॉल के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये आपकी ट्रिक जरा फेल हो गई।

Whitish Beauty products आपके लिए अवेलेबल है जनाब. Whitish Beauty products आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, Whitish Beauty soap लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए जनाब. रेगुलर आप कोई भी soap लगाना चाहते हैं तो आपके लिए Whitish Beauty soap बहुत ही बेस्ट ऑप्शन साबित होने वाला है, क्योंकि Whitish का जो soap है ना, ये बहुत ही कमाल का soap है जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है. ये तमाम चीजें मिलकर तैयार हुआ है जनाब Whitish Beauty soap. अगर आप भी Whitish Beauty soap लगाना चाहते हैं तो आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई लगाएंगे जनाब. और उसके अलावा अगर आप साबुन नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, तो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आपके लिए Whitish Beauty फेस वॉश भी अवेलेबल है. Whitish का जो फेस वॉश है ना, ये विटामिन सी से तैयार किया गया है, इसके अंदर विटामिन सी भी है, थोड़ी थोड़ी विटामिन ई भी है, समझ रहे हैं. और ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे आए हाय चस्सी करा दी, आज भी बिल्लो जिंदा है, बिल्लो ने कहां मरना है. और उसके अलावा Whitish फेस वॉश लगाती है बिल्लो, इसलिए बिल्लो आज भी जवान है. तो आप भी Whitish फेस वॉश यूज कीजिए. और Whitish फेस वॉश के साथ आपको मिल रही है Whitish ब्यूटी क्रीम, जो कि नाइट क्रीम है. नाइट क्रीम में लगाना पसंद करते हैं तो Whitish ब्यूटी क्रीम का ट्राई जरूर करके देखिएगा. इसी के साथ साथ

आप बातें प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश इंडिया स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए। खूबसूरती का चस्का आपको भी लगेगा ना, तब आप जानेंगे कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाकई कितने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। वासु भाई कहते हैं आता भी वो आप खुद ही था और जाता भी वो खुद ही था, मगर वासा एक बात अजीब थी, उसमें नुकसान हुआ तो सारा हमारा हुआ। समझा। और यहाँ पर किशोर भाई कहते सलाम मदा स्मार्ट हाजरा स्मार्ट चौथा भली करे आया और ऐसे कहते माशाल्लाह अज कराची जी। हाँ भाई पावर आ पावर सुठी गाल है ना माशाल्लाह। कदे जेको है शहर जो तवा समझू था। अच्छा किशोर भाई कहते अदा हाणी हाणी हाणी मो बुधो कसम बुधा न मु तो कदे एडो कोई एड ना ठायो। और कहते टॉपिक जल्दी बुधा टॉपिक तमाम बुद्धि भर तो हूँ। मुश्ताक अहमद कुंभर कहते सिद्रा बहन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, आपका प्रोग्राम नाई से है। मैं मुश्ताक अहमद कराची से आपको सुन रहा हूँ। मुश्ताक भाई आपको वेलकम कहते। आदिल कहते कल में दिल में अच्छा वो पता नहीं था ना दिल में बातें करते वो मैं कैसे सुनूंगी। आबिद ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं नौशरो फिरोज से हेलो। मुश्ताक अहमद कहते हैं क्या ये ट्यूब कराची में दस्तियाब है और कहाँ मिलता है कराची में, आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिएगा आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो जो नंबर आपको मैं प्रोग्राम के अंदर बता रही हूँ ना और नंबर्स को आपने जरा नोट कर लेना है और नंबर्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर डायल करके अवेलेबल करा सकते हैं। तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं और हर स्किन के मुताबिक ही जनाब कोई टेंशन की बात ही नहीं। ओके जी मोहम्मद जमान की थी अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आरजे तुम्हें एक टैलेंट दिखाऊं, बच्चों से चिप्स कैसे छीनकर खाई जाती हैं, तुम भी खाओ फ्रेंड को भी खिलाओ मजे की जिंदगी। ये तो मैं बहुत पहले से कर रही आ रही हूँ तो ये टैलेंट मेरे अंडर कूट के भरा हुआ है, आप कोई और बात बताए। नसुला भाई कहते हैं हाँ साईं यहाँ जी स्किन ब्यूटी क्रीम माँ मैंने इस्तेमाल कई वो असर आ माँ एकड़ो चिकर गलती में वारन में लगाए और मुझे सजा वार अच्छा थी वया। बिल्कुल भाई तांगे ख्याल करो ना तांगे सिर्फ पाने फेस ते लगा लिया है दाढ़ी मुच्छन खां भी दूर रखो फेस ते लगाने वाली चीज आई कंध ते भी थोड़ी लगाए जो कंध भी तान जो था भाई ना तो मुंह जी टुकड़ी अच्छी हो जाए कंध वाली।

0: It's 2 PM. This time check is brought to you by
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, विरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

ॿारनि सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं। आबना हरमस बाबति हिकु मुआदो मौजूदु आहे। ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ खणण वारो मुआदो बि हासिल कयो वेंदो। माण्हू मारणु नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो। अमेरिका सां हिन वक़्तु का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। उमान सां अबन हरमुज़ ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। छिकताण में घटिताई लाइ नवां साल साम्हूं नाहिन आया। पाकिस्तान साल्स तौर किरदार अदा करे रहियो आहे। कतर बि ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे। चीन छिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वक़्त जा सभु मेंबर ईरान में ई मौजूद आहिनि। फ़िलहाल कंहिं बि वक़्त जी मेज़बानी करण या कंहिंजो महिमान थियण जो इरादो नाहे। ओमान सां अबन हरमुज़ में महफ़ूज़ रस्ते ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि।

अमेरिका ईरान जे ॻाल्हियुनि खां पहिरें पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जो मुतहरिक। सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर जो ईरानी हमनसिब अब्बासी रक़्ची सां फोन ते राब्तो। खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो। ज़रियनि मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास रक़्ची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर बुलोरमा उमगा बाज़ार जे मुलाक़ात। ॿारनि जी वाद वेज में रुकावट जे ख़ात्मे लाइ सिंध हुकूमत ऐं वर्ल्ड बैंक जो गॾियल हिकमत अमली ते इतफ़ाक़। गिज़ायत साफ़ पाणी, समाजी तहफ़ुज़ ऐं ज़राइत खे गॾियल फ्रेमवर्क हेठि आणण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर चयो त ॿारनि में ग़िज़ाई खोट इंसानी तरक़ी ॾाढो वॾो चैलेंजनि मां हिकु आहे। ॿारनि जी ग़िज़ायत बहितर बणाइण लाइ गॾियल हदफ़ ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी जे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां लाहौर में मुलाक़ात। मुल्की, सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ज़रियनि मूजिबि घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां मॉडल टाउन में गुज़िरियल ॾींहुं मुलाक़ात कई हुई। मुलाक़ात दौरान मुल्की, सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं।

पंजाब के शहर रावलपिंडी में बरसात तबाही मचाए छड़ी। पानी घर में दाखिल रोड्स से बे टिन का चैन फुटन ताई फुटन ताई पानी बीठल शहरी सख्त परेशान। बेहड़ मां पुरसरार नमूने गुम थियल बिन भेनरन जो पतो न पैजी सको। वारसन पारा अगवा जो शक। बिस्मिला कॉलोनी मां 20 वरन जी लाइबा 18 वरन जी रज़िया बिरोई टिन ॾींहनि खां पुरसरार नमूने गुम आहिनि। न्याणियुनि जे वालिद जो चवण आहे त पुलिस न्याणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा न आहे। न्याणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़तम कई वञे। खैरपुर में कारे इल्ज़ाम हेठि भाउ हथां टिन ॿारनि जी माउ क़तल। मिल कॉलोनीअ में जवाबदार असद जावरी साथियुनि सां गॾिजी पंहिंजी भेण टिन ॿारनि जी माउ इरम ज़ाल अहमद अली जावरीअ खे क़तल करे फरार थी वियो। औरत जे मुड़ुसु अहमद अली जावरी चयो आहे त संदसि ज़ाल कारी न हुई। खेसि बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। मेहड़ मां मुबैना तौर अगवा ॼाणायल टिन सहेलियुनि अगवा जी तरदीद करे छॾी। अदालत में मर्ज़ी मूजिबि हैदराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि वञण जो बयानु ॾेई छॾियो। मुबैना तौर अगवा ॼाणायल शागिर्दियाणी रोशनी 161 जे बयान में चयो आहे त मां फातिमा जावरी ऐं तंज़ीला पवन मेहड़ मां हैदराबाद वियासीं, जितां दोस्त ॾांहुं मीरपुर ख़ासि वियासीं, जितां पुलिस हथ कयो। अदालत टिन्ही छोकिरियुनि खे हिकु ॾींहं लाइ सेफ हाउस हवाले करे छॾियो। जवाबदार ज़ैन महर हिकु ॾींहं जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। लाड़काणे में कंबर मां 10 महीना अॻु पुलिस पारां मुबैना तौर गिरफ़्तारीअ बाद गुम कयल समाजी अॻवाणु सिकंदर गोपांग जी आज़ादीअ लाइ एहतजाज। वतन दोस्त मज़दूर फेडरेशन जे सॾु ते सिकंदर गोपांग जी आज़ादी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाणनि मूजिबि कंबर में हारपो करण लाइ वयल समाजी अॻवाणु सिकंदर गोपांग खे 10 महीना अॻु पुलिस खंभे गुम कयो आहे। लॻातार एहतजाज बावजूद खेसि आज़ाद नथो कयो वञे। संदसि मासूम ॿार ऐं घरबाती परेशान आहिनि। खैरपुर में LPG गैस जे अघ में वाद ख़िलाफ़ रक्षा ड्राइवर्स जो एहतजाज। रक्षा यूनियन जे पोरेतन रक्षाऊं बंदि करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। ड्राइवर्स जो चवणु हो त खैरपुर LPG गैस 400 रुपयनि खां वधीक फ़ी किलो विकिरो थी रही आहे। ज़िले इंतिज़ामी अथरादू अघ वधाईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। झंडो मरीवे जो न्यू माइनर शाह खे 50 फुट घारो। 7 एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि। ॻोठु सैयद पना शाह वटां न्यू माइनर शाह खे 50 फुटनि जो घारो लॻो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त घारे सबबि 7 एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि अची वियो आहे। आपाशी अमलो नाहे पहुतो।

0: सिंधी बोली जी सब खां वडी ए मकबूल तरीन अखबार रोजानी कावश छटरी बहारू डिसी वरतियूं। सिंध जे पानी जो मसलो हुजे या वसीलन जी मालकी, रोजानी कावश हर मैदान में अकबरी रहंदी। पाण मलायो रोजानी कावश साफत में नवा लाड़ा मुतारिफ कराईंदे, सिंधी साफत के जदीद तेज ए बातमाद बनाइण में तारीखी किरदार अदा कयो। रोजानी कावश पंहिंजे शानदार ऐं बेबाक साफ़त जा 36 साल कामयाबीअ सां मुकमिल कया। रोज़ानी कावश सत पारां सिंध जे वसीलनि हक़नि मिसकिननि ऐं बेपोच माण्हुनि ते थींदड़ ज़ुल्मनि, नाइंसाफ़ी ऐं बेवाजिबियुनि ख़िलाफ़ु भरपूर आवाज़ उथारण वारे अज़म जो वरजाओ। मुख़्तलिफ़ शहरनि में कावश जी सालगिरह ते केक बि काटिया विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
2: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
3: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
2: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
2: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
2: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा
1: हूँ। यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।
2: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Har din har pehar zindagi ki lehar. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

का इंतखाब कर लेना है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को जो जो बातें मैं बताऊंगी ना, वो इतनी जबरदस्त होने वाली है कि आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, तो आप भागते हुए जाइए और परचेज करके आइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम, इसे ऐसे तरीके से तैयार किया गया है कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और जना मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ इसे डॉक्टर्स की फुल निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको विटामिन ई बीट्स मिलेंगे, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। तो ऐड करने का फायदा जो आपको मिलेगा वो ये कि आपकी जो स्किन है ना वो इतनी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी, आपके चेहरे पर जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से ही आपको मिल जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल सुना, दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल करेंगे, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है, मैयारी ब्यूटी क्रीम है, जो जिल्द की जिल्द को ना नमी फराम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा बनाते हैं, और उसके अलावा अगर आप बाकायदा इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपकी जिल्द की जो बेरोनगी है वो भी कम हो जाती है और चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खसूसी अज़ा जो आपकी जिल्द को फ्रेश एहसास देते हैं, खूबसूरती में इजाफा करते हैं, रोजाना इस्तेमाल से आपकी जिल्द जो है वो कुदरती निखार आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी खूबसूरती में इजाफा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चाहे मर्द हसरातें चाहे आप खवातीन, हर कोई चाहिए आप लोगों को कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, और साथ में आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, तो ये भी चीज जरा याद रखिए। और डी स्किन फेस वॉश की जाने पाते हैं तो डी स्किन फेस वॉश भी भाई कमाल का प्रोडक्ट है, ये भी किसी से कम नहीं है। और डी स्किन फेस वॉश जो है ना इसे तैयार किया गया है, इसके अंदर एड है जनाब हाइलोरोनिक एसिड सीरम, और हाइलोरोनिक एसिड सीरम की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए इस तरह जरूरी होता है कि जब आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करेंगे जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, तो ये सीरम आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन बनाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई भी साबुन लगाते हैं, कोई फेस वॉश लगाते हैं जो आपकी स्किन को जरा जो है ना वो ऐसा रूखा सूखा बना देता है, बहुत सारी खुश्की आपके चेहरे पर आ जाती है, तो जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी स्किन जो है वो इस्तेमाल करने के बाद फौरन बाद ही मॉइस्चराइजिंग का आपको एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डी स्किन फेस वॉश आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, जैसे भी कोई फेस वॉश यूज करते हैं वैसे ही करेंगे, दिन में 2-3 मरतबा लगा लीजिएगा। रात को फेस वॉश बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो वो इसके बिल्कुल मत किया करें, रात को फेस वॉश करके अच्छे से उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्राई करके देखिए, आपकी खूबसूरती आपको मिल जाएगी और आप ना सिर्फ खूबसूरत हो जाएंगे बल्कि आपको ये एहसास भी होगा कि भाई वाकई आपके पास अब अच्छे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। तो मार्केट जाइए तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए जिसमें आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश भी शामिल हो जाता है। और नाम लेने की सूरत में आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 0332738403 09, 0332738403 09, और दूसरा नंबर है 0312502590 07, 0312502590 07।

आज के प्रोग्राम में मैंने टॉपिक आप लोगों को ऐसा समझ लें कि एक चैलेंज दिया है कि आपने कोई ऐसी मुझे बात बतानी है जो बात सुनकर मुझे हंसी आ जाए। आज मेरा जरा हंसने वाला मूड नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप कोई ऐसी बात करें जैसे सुनकर और देखकर मुझे हंसी आ जाए। समझ रहे हैं?

जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है क्योंकि अली सफर की आवाज में, अली सफर ही है ना. हाँ जी, एसएन अली बुक्टी भाई हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं. और निदली कहती है टॉपिक तो देखो तुम्हें और हंसाओ, जरा सी बात पर हंसती हो तुम, रुको बताती हूँ. मैं आज फुल कंट्रोल करने वाले मूड में हूँ. अरे किशोर भाई कहते असांजी हाजरी तुम्हारे चेहरे ते स्माइल वठी दिया है. भाई अच्छा अच्छा था चो बुद्ध था यो मुखे हजार तो खुलो करे रे, हजार खुलो न थी तो बाबा खुलो थी तो मिंट खत्म थी वे, इन लाइ असां खुलो न कराईंदासीं.

रहमान कहते हैं आज आपको हंसाना इतना मुश्किल हो गया है जितना गूंगे को शादी के लिए हाँ बुलवाना। हाय इतना भी मुश्किल नहीं है। अली मुर्तजा कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना और ऊपर से सड़ियल को तो बड़ा ही मुश्किल। माँ सड़ियल आया माँ तो स्वीट आया आप हंसा नहीं पा रहे। अच्छा लुबी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम सिडो जानी में भी आ गई तमांजे शो में खुश आयो नी सिडो माम भी खुश आया वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह हमेशा खुश रहो। कहती मिस यू सिडो जानी निधि एंड जिया को भी मिस यू। चले नी दोनों को मिस यू हो गया बिल्कुल जी खबी अतवारो सही समझो सुमरो बा अच्छा मूसा कोरी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम वासा भाई कहते माने इहा गाला अदी सिद्रा की खिलाण हुआ होशियार थी अदी माँ होशियारी आया तां पांजी कयो।

ना बाबा ना बाबा इश्टिंग ऐसा कौन पहना है। अकलक भाई कहते ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छी बात है, ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए। मोहम्मद जमान बहुत शुक्रिया जी। दर्दे दिल कहती है गली गली में पंखे हो हर शहर में, रंग खुशबू नजारे। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल सकती, सॉरी माजरत। हाँ असा वा थी वह असा हाँ खिचको निकंदी।

0: रमजान भाई हमारे साथ मौजूद है। रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में।
1: रंग खुशबू नजारे, प्यार के हो इशारे और तुम साथ।
0: निदड़ी कहती है कि टॉपिक, कोकिला ने बोला राशि को,
1: सुना सुना
0: गोपी कहाँ है? राशि ने बोला गोपी अपने रूम में होगी। कोकिला ने आवाज दी गोपी को और गोपी बहू आ रही थी, साथ में ये सॉन्ग भी प्ले हो गया। ले में सैया आ गई सारी दुनिया छोड़। ये आप हंसाने की कोशिश कर रही है लेकिन आप जरा फेल हो चुकी हैं, तो और ट्राई करें। वैसे ये गोपी वाला जो है ना, वो ड्रामा 2 भी आ गया है, उसमें गोपी का नाम है। ये वो वाली चश्मी दे रहा जो पहले वाले की थी।

नहीं आती हमें, बस आप ऐसा कीजिए, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लीजिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं अवेलेबल, तो जो नंबर आपको बताया उसके ऊपर रब्ता कीजिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, ट्राई करके देखिए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है जो कि आप सारे लोग ही लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो तब भी आप लगा सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट साबित होने वाला है, ट्राई कीजिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं. हजार बार कहते हैं कि पता नहीं आज आप हैप्पी हैं या सैड हैं, ना हंसती हो या ना ही गुस्सा करती हो. सिस्टर आई एम कंफ्यूज्ड, ये थोड़ा थोड़ा मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं सैड हूँ या मैं हैप्पी हूँ, समझ नहीं आ रही बात. मेरा नर्वस सिस्टम जरा नर्वस हो गया है.

0: ओके दर्दें तो लगती हैं कि आठ से आप लोग ये बात समझ नहीं आई क्या, जरा गहरी बातें कहने वाला जो कॉमेंट है ना ये समझ नहीं आया, और कहती है कि जरा सोच रही हूँ वजन थोड़ा बढ़ा लो, आजकल लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। हाँ जी बढ़ाइए बढ़ाइए वजन, फिर कम करना बहुत मुश्किल लगेगा। अच्छा हाँ ये मैं खुद ही सोच रही थी कि 5 बजे वाला मेरा जो शो है ना वो जब बीच में पोस्ट बंद हो जाती तो मुझे ये लगता था कि वो प्रोग्राम ही बीच में कट हो जाता है, यानी कि पूरा नहीं प्रोग्राम चल पाता होगा, लेकिन वो मैंने कल फिर सुना था तो मुझे लगा था भाई प्रोग्राम जो है ना वो पूरा ही चल रहा है, बस आप लोगों के कॉमेंट्स है ना बंद हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या मसला है। और मैंने ये थोड़ा डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि ये पहले भी थोड़ा मसला हुआ था, इस टाइम के साथ थोड़ा सा इशू है, तो ये खुद ही मसला जो है ना वो ठीक हो जाएगा, पता नहीं कि इसके साथ क्या करना पड़ेगा मुझे, बस सब्र ही कर सकते। वैसे मैं सोच रही थी एक और बात वो बताऊंगी, जरा रुको सब्र करो, अभी टाइम आ चुका है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, तो हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए और हमारे साथ ही पूरी पूरी 3 बजे तक आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड टेस्ट इन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टेस्ट इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: It's 2:30 PM. फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में, डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तजुर्बो हजारे मरीजन जो

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं और जनाब जी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताते जा रहे हैं। तो चाहे आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं, हर तरह से आपकी खूबसूरती की हिफाजत ही हिफाजत है जनाब। खूबसूरत बनना और खूबसूरती की हिफाजत का या दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। खूबसूरत तो आपको कोई भी प्रोडक्ट बना देगा लेकिन आपकी खूबसूरती की हिफाजत करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम बन जाता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई आपकी खूबसूरती की हिफाजत होनी चाहिए, आपको खूबसूरती मिले और उसके साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे, तो आपके लिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है जो कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही मुनासिब से पैसों में आपको मिल रहा है ये प्रोडक्ट। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, ये भी कमाल का प्रोडक्ट है। तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि भाई वाकई ये प्रोडक्ट्स कितने कमाल के हैं। और उसके अलावा मर्द हजरात खवातीन हर कोई

हाओ हाओ सा न वनी वाला खिलान दी खिलान बस नसो त मुझे खिलन जी केरी ता की परवाह है माशाल्लाह माशाल्लाह सदको वन्या अल्लाह से खुश रखे ओ हेडो सारो खुश रखे अच्छा उनका अलावा है तमाम सा पैनल ते मैसेज आए तो पैनल दी तरफ अचूं हैप्पी गर्ल हमारे साथ के दी अस्सलाम वालेकुम आज से डो जानी आज मां भी अच्छी वयम बहुत दिनों के बाद चली थी आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है हैप्पी गर्ल अंबर हमारे साथ फ्रॉम लाड़कना कहती अदी से डो मुझे याद करती है या नहीं भुला दिया होगा ना 3-5 साल के बाद शामिल हुई हूँ शो में अदी आप हंसती हैं तो मुझे आप बहुत पसंद आती हैं हंसा करें जी जी मैं बहुत हंसूंगी ठीक है अच्छा अंबर बिल्कुल आप हमें याद है इतना टाइम आप कहाँ गुम हो गई थी बताएं तो जरा और ये हमारे साथ है हैप्पी गर्ल ओके जी आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ है फ्रॉम सरदार अली असगर रिंद कहते हैं सलाम पाकिस्तान पाक आर्मी प्लीज आज अली सफर का कोई भी खूबसूरत सा गाना लगाएगा बिल्कुल जी अली सफर का गाना आपको सुना लिया आपने एंजॉय करा होगा मीरपुर खास अब्दुल्ला महर की थी अस्सलाम वालेकुम बाजी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है ये तो वो मानो जगह व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया सो तमाम भी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो जो मुनासिब लगे जो सूट करे वो तमाम लगायो बाबा जी तमाम भी खूबसूरत है अच्छा अंबर फ्रॉम लाड़काना कहती है कि अदी सिडो में 3 साल के बाद शामिल हुई हूँ और आप मुझे भूल तो नहीं गई है ना मेरी शादी हो गई है ओके माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह खुश रहे और रतो देरों से रेहान खान हमारे साथ फयाज उर्स अहमद कहते हैं बाजी क्या हाल है आपके खुश हैं कोई भी मजाया सॉन्ग सुनाइएगा जैसे बताइएगा उनका अलावा हैप्पी गर्ल कहती सिडो जानी ठीक है आप शो हमेशा की तरह आपका बेस्ट जा रहा है थैंक यू ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम मैडम साहिबा केड़ा हाल है तवाजा फौजी पठान खान खोसो हमारे साथ मैडम असां के कोई भी गानो बुधराए जो शाहबान अली खोसो भी तवा सा गड मौजूद आहे सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो वडेरी सिदरा मुस्कान असां के फौजिया सुमरो बुधराए जो हाजिर प्यारा भा तवाजी फरमाइश लान जी कोशिश कयो था और हमारे साथ मकसूद मल्हा कहते मेहरापुर से आदाब सिदरा जवाब है असान जो पांजो अजो मूड खराब असान के तखिला पेरिया मां जिंदगी में पेरो दफो ता के चा ता मुके खिलायो दसो कर दी ना छोटी बात चलो कोई बात नहीं ता के खिलाईदासी बाबा मुजो मूड केडो बे होंदो ना मां फील ही ना कराए दीदी ता के ता जो मुजो मूड सही आया खराब आ उनका अलावा जो साजिद अली जमाली ही नवाब शाह से कहते सॉन्ग प्ले करे मुमताज मलई हाजिर हले तो मुमताज मलई थोड़ो बस सबर कजो चाचा खालिद हमारे साथ कहते एक तकलीफ सॉन्ग की है जी बिल्कुल चाचा तवा जो गानो हलायो था थैंक यू सो मच तवा से गड आयो मुमताज मलई ते इंदो पर मु समझो पेरा नगत नाज के अचन घुर्जे सैया

बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए. अच्छा अदा अच्छा था चो अदा चे तो अदा मुखे तुझे खिले छो बन दिया खबर आ न बुधाए जो ता सही छो बन दिया है यो इन जे पोया केड़ो रीजन है. अच्छा मोहसिन अली हमें सुन रही है लाड़काना से, मोहसिन अली बिरोही मीरो खान चौक लाड़काना से आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. अली मुर्तजा कहते हैं अनमेच्योर लोगों को हंसाना इजी है, मेच्योर और प्रैक्टिकल लोगों को ऐसी बातें करके खुद हंसी का सही बात है वैसे. अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं तू नहीं खेले तो चलो ठीक है आसान खेलो बिल्कुल ता खेलो ता खेलो. आदिल कहते हैं कि जो गुम हुए वो जमाने तलाश करता हूँ, मैं वापसी के बहाने तलाश करता हूँ. अच्छा चाचा खालिद आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून बेटा सिडो, आई एम हियर. आपने पूछा कि कोई ऐसी बात जिस पर आपको हंसी आए तो वो आप आरजे हैं, आप हंस के दिखाए ना हम दुखी लोगों के लबों पर हंसी आई. टॉपिक आंसर बिल्कुल बिल्कुल चाचा तमाम जी तमाम जड़न मारन चलाया था हमेशा मां खिलन दिया है जी तमाम के एहसास न थे तो बाबा दुनिया में कीड़ा गम आए. खैर दुख ऐं सुख हर कंहिंजे ज़िंदगी में हूंदा आहिनि, दुख ऐं सुख यानी की ॿई चीज़ूं आहिनि जेके तव्हांजी ज़िंदगी में लाज़मी हूंदियूं. ईअं बि न आहे त ज़िंदगी में या दुनिया सॼी में को अहिड़ो माण्हू हूंदो जेको सिर्फ़ु हैप्पी हूंदो या को अहिड़ो माण्हू हूंदो जेको सिर्फ़ु जंहिंजे लाइफ में दुख हूंदा. दुख ऐं सुख ॿिन्ही ॿई जेके हूंदा आहिनि न तव्हांजी ज़िंदगी में मौजूदु हूंदा आहिनि, पर इहा ॻाल्हि हूंदी आहे त तव्हां वधीक तरजीह कंहिंखे ॾियो था, तव्हां ॾुखनि खे तरजीह ॾियो था या तव्हां सुखनि खे. छो त जेके माण्हू ॾुखनि खे वधीक वैल्यू ॾींदा त हू हमेशह सैड ई रहंदा, बाक़ी जेके खिलण वारा माण्हू हूंदा जेके चवंदा बाबा छा आहे ज़िंदगी त पई हलंदी पर अचो त ज़िंदगी खे इंजॉय कयूं, असां जहिड़ा माण्हू उहे पिया खिलंदा रहंदा आहिनि. सो खिलंदा कयो बाबा ऐं खिलंदा जेके माण्हू उहे त ॾाढा सुहिणा हूंदा आहिनि. सो तव्हां बि अगरि सुहिणा थियणु चाहियो था खिलण सां गॾोगॾु तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु बि करिणो पवंदो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां नथा इस्तेमालु करे सघो त तव्हां वटि डी स्किन जो फेस वॉश मौजूदु आहे, ऐं डी स्किन फेस वॉश लॻाइण खां फौरन बाद तव्हांखे अहसासु थींदो त बाबा डी स्किन जो फेस वॉश एॾो सुहिणो आहे, एॾो भलो आहे, एॾो ज़बरदस्त आहे त हाणे असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻाइणु घुरिजे. सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻायो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि नाइट क्रीम आहे हुनखे तव्हां राति टाइम लॻाए सघो था, बाक़ी डी स्किन जो फेस वॉश उहो त बाबा तव्हांजी जंहिं महिल दिलि चवे तव्हां तंहिं महिल लॻायो, तव्हांजी शइ आहे.

ओके, बहुत खूबसूरत गाना हमने सुना. एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि मुमताज मलिक की आवाज में होने वाला है. मुमताज मलिक के गाने की आप बहुत से लोग फरमाइश कर रहे थे, तो हमने फाइनली ये वाला गाना लगा लिया है जो कि हम एंजॉय करेंगे. अदा टेम आया था टेम.

ओके जी, पोस्ट के लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ठीकु आहे, तव्हांजे तरफ़ खां मोहबत हूंदी आहे. अखलाक भाई कहते खिलंदा त कुतर कुतर कंदा. मां असां वॾा खूनी माण्हू आहियो, अली एॾी वॾी धमकी ॾेई छॾी, हाणे त मूंखे ज़ोरी बि खिलणो पवंदो. थैंक यू सो मच, थैंक यू. चाचा कहते हज़ार खुलियो. हा हा, हज़ार भाई खे चऊं था असांखे हज़ार खुलियो करे ॾींदो. उन खां अलावा अली मुर्तज़ा खे हिते माण्हू स्पॉन्सर्ड करे करे अमीर थी विया, ईअं ई न, माना थोरो थोरो साड़ थी वियो न. अलाह जो शुक्र आहे बाबा. निदड़ी कहती है कि ऐसी बात है तो सुनो, एडो वडो कमेंट. कहती है कि मेरी माँ साथ जहरा मेरी भाभी को बोलना चाह रही थी, तुम्हारी मोबाइल मुझे पसंद नहीं, बट उसने भाभी को बोला कि मुझे तुम्हारी ओ तेरी. ये तो भाई साहब कुछ ज्यादा हो गया. अच्छा अली अकबर भाई, आप ममताज मलिक का गाना सुनना चाहते थे, तो ये ममताज मलिक का गाना चल रहा है.

0: मतलब ये गाना
1: मैं सुन तो रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हे तीर जेको आ सोयो इन्हें जो मुंह केड़ा है

बिल्कुल मां भी हाने समझी यो निगल दिगे तो चल सही सही सही सही मां ने सोचा भाई यो जको टाइम आ चुप करी बैठा नहीं मां सोचा ओगी दिस डी स्किन ब्यूटी क्रीम त मां लगाए था कोने यो बुधाए जो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तां पाण न था लगायो न त पो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा के गिफ्ट करे सगो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा के गिफ्ट करण दे तवा जी दिल चवे थी यो मुखे बुधाए जो सो त कुछ प्री प्यारा सा जिंदगी में हुंदा है जो खूबसूरत थियन असा के डाडी खुशी दीदो है अगर तां भी चाहते त बाबा तवा जे के प्री प्यारा न वे खूबसूरत दिखा जे त उनन जे लाए तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस करे सगो था हु भी खुश थी वेना ई तवा भी खुश थी वेदा तवा ई खुश थी वेना सो त हु खूबसूरत थी ना त तां के जाहिर सी गला खुशी थी दी वरी कुछ ईअं थींदा त हुननि खे इहो महसूस थींदो त बाबा असांजी परवाह करण वारो अॼु ॾींहं ताईं कोई आहे ईअं थींदो आहे असां कॾहिं कॾहिं महसूस थींदो आहे त असांजी ज़िंदगी में माण्हू त खोट सारा आहिनि पर असांजी परवाह शायदि कंहिंखे कोन्हे का सो माण्हू जेके बि तव्हांजा प्यारा आहिनि जेके तव्हांजी ज़िंदगी में थोरी वैल्यू रखनि था उन्हनि खे महसूस कराईंदा कयो त यस यू आर इम्पोर्टेंट सो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे प्यारनि खे तोहफ़ो ॾियो ऐं डी स्किन जो फेस वॉश त वाह वाह वाह वाह ॾाढो भलो अथव ॿई चीज़ू ॾियो त ॾाढा भली ॾाढी भली ॻाल्हि आहे अगरि हिकु चीज़ बि ॾियणु चाहियो था त या त फेस वॉश ॾियो या त ब्यूटी क्रीम सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन जो फेस वॉश आहे लॻायो बाबा तव्हां बि सुहिणा थियो तव्हांजो बि हक़ आहे अच्छा हैप्पी गर्ल थैंक यू सो मच आपका बहुत शुक्रिया तन्हा मोहम्मद हनीफ खान डहानी हमारे साथ ही थैंक यू और थरी मीरवासी मोहम्मद इब्राहिम खास के लिए अदी सिद्रा थैंक यू प्यारे भाई आज तो भाई आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए ना क्या बात है बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखकर दिल ही गार्डन गार्डन थी वेंदो है अली मोहम्मद हमारे साथ नाजो दे बहुत शुक्रिया आपका एसन कहते ब्रेक मेल खिली अचे थी ना बाबा एड़ी भी का गाल को निका और इनका अलावा सोनाला फुलपोटो हमारे साथ नाजो दे आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया उसके लिए बहुत शुक्रिया आदिल कहते सिद्रा न बाबा कहते टोक नक जेला सही डो ढींद इन कर कंदा आयो बाबा न तोबा तोबा और कहते ये सॉन्ग प्ले करें गानो तांजो पंज बजे वाले प्रोग्राम बुधा ठीक है अख्तियार अली सिंधी साहब हमारे साथ मौजूद है अवां सलाम निनायन रिजवान साहब के सो थैंक यू सो मच ओके ओके अब्दुल गफार भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और ये हमारे साथ हैं एक मिनट में देख लू कोई नया बंदा तो नहीं हमारे साथ हाँ जी काबले सुकून हमारे साथ हैं काबले सुकून वालेकुम अस्सलाम डियर सिद्रा आई एम अलीशा सखर से आप हमें सुन रहे हैं क्या बात है आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया हाँ नसरुल्ला भाई पुरानी परंपरा को भी पूरा करना चाहिए

अच्छा यो मुखे रीजन खबर पे जी वही त जदी मा खिलनी आ त तमा के मा छो वणंदी आ हर सही संगो तो के जी याद त अच्छी वती अच्छा रमजान भाई थैंक यू आप हमारे हिसाब से चाचा खालिद कहते डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो यूज किया वाह सही बात चाचो तो चिमके तू ये दुखन वारो मिले थोड़ा ड्रामो हो एपिसोड खत्म थी चुको है वरी तव्हां सां मुलाकात मुंहिंजी जेका थी पई उहा 5 बजे वारे प्रोग्राम में थी पई सो 5 बजे वारे प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कजो ठीकु आहे सो ही सिलसिलो इते ख़तम कयूं था वरी 5 बजे मिलूं था सो पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखिजो ऐं उन खां अलावा जेके जेके माण्हू असांखे ॿुधनि पिया नी सो उन्हनि सभिनी खे बाबा चवंदासीं त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वाइट एज जा प्रोडक्ट हुजनि इहे सभु तव्हां इस्तेमाल कयो ऐं तव्हां जा इलाही सारा कॉमेंट हुया सो थैंक यू सो मच ओ हेॾो थैंक यू ओ हेॾो छत खां बि वॾो सफ़ा वॾो आसमान जेॾो सो पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखिजो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट बि इस्तेमालु कयो ऐं डी स्किन जा प्रोडक्ट बि इस्तेमालु कयो जेको प्रोडक्ट तव्हांखे वणे थो बसि वठी अचो ऐं इस्तेमालु कयो न मिलण जी सूरत में पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते भॼंदा वञो ऐं उतां वठी अचो सही आहे ऐं नथा मिलनि त पोइ तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायो हुन नंबर ते राबितो कजो सो मोकिलाणी न आहे बाबू सिलसिला में सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल

0: आज तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हथ खणण वारो मुआहिदो बि हासिल कयो वेंदो। माण्हू मारण नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो। अमेरिका सां हिन वक़्त का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। ओमान साहब न हरमुज़ ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। चिकताण में घटिताई लाइ नवां साल साम्हूं नाहिन आया। ईरान ऐं अमेरिका विच में पाकिस्तान साल्स तौर किरदार अदा करे रहियो आहे। कतर बि ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे। चीन चिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वफ़द जा सभु मेंबर ईरान में ही मौजूदु आहिनि। फिलहाल कंहिं बि वक़्त जी मेज़बानी करण या कंहिंजो महिमान थियण जो इरादो न आहे। ओमान साहब न हरमुज़ में महफ़ूज़ रस्ते ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमेरिका ईरान जे ॻाल्हियुनि खां पहिरीं पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब मुतहरिक। सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर जो ईरानी हमनसिफ अब्बास इराकचे सां फ़ोन ते राब्तो। खिते में जारी चिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो। ज़रियनि मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर बलोरमा उमगा बाज़ार जी मुलाक़ात। मेरवारनि जे वाद वेज में रुकावट जे ख़ात्मे लाइ सिंध हुकूमत ऐं वर्ल्ड बैंक ते गॾियल हिकमत अमले ते इतफ़ाक़। गिज़ायत साफ़ पाणी समाजी तहफ़ुज़ ऐं ज़राइत खे गॾियल फ्रेमवर्क हेठि आणण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर चयो त ॿारनि में ग़िज़ाई खोट इंसानी तरक़ी ॾाढो वॾनि चैलेंजनि मां हिकु आहे। ॿारनि जी ग़िज़ायत बहितर बणण लाइ गॾियल हदफ़ ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम क़ाइमु कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां लाहौर में मुलाक़ात। मुल्की सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ज़रियनि मूजिबि घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मॉडल टाउन में गुज़िरियल ॾींहुं मुलाक़ात कई हुई। मुलाक़ात दौरान मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। पंजाब जे शहर रावलपिंडीअ में बरसाति तबाही मचाए छॾी। पाणी घरनि में दाख़िल, रोडनि ते बि 3 खां 4 फुटनि ताईं पाणी बीठल। शहरी सख़्त परेशान। मेहड़ मां पुरसरार नमूने गुम थियल ॿिन भेनरुनि जो पतो न पियो। वारसनि पारां अगवा जो शक। बिस्मिला कॉलोनीअ मां 20 वरनि जी लाइबा ऐं 18 वरनि जी रज़िया बिरोही 3 ॾींहनि खां पुरसरार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवणु आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा नाहे। नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़तम कई वञे। खैरपुर में कारे इल्ज़ाम हेठि भाउ हथां 3 ॿारनि जी माउ क़तल। बिल कॉलोनीअ में जवाबदार असद जांवरी साथियुनि सां गॾिजी पंहिंजी भेण 3 ॿारनि जी माउ एरम ज़ाल अहमद अली जांवरीअ खे क़तल करे फ़रार थी वियो। औरत जे मुड़ुस अहमद अली जांवरी चयो आहे त संदसि ज़ाल कारी न हुई, खेसि बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। मेहड़ मां मुबैना तौर अगवा ॼाणायल 3 सहेलियुनि खे अगवा जी तरदीद करे छॾी। अदालत में मर्ज़ी मूजिबि हैदराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि वञण जो बयानु ॾेई छॾियो। मुबैना तौर अगवा ॼाणायल शागिर्दियाणी रोशनी तेवड़ो 161 जे बयान में चयो आहे त मां फातिमा जांवरी ऐं तंजिला पौर मेहड़ मां हैदराबाद वियासीं, जितां दोस्त ॾांहुं मीरपुर ख़ासि वियासीं, जितां पुलिस हथ कयो। अदालत टिन्ही छोकिरियुनि खे 1 ॾींहं लाइ सेफ हाउस हवाले करे छॾियो। जवाबदार ज़ैन महर खे 1 ॾींहं जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। सिंध में ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज जारी। कंबर में सिंधारी आबादगार इतिहाद तरफ़ां मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहन में ज़रई पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज मुज़ाहिरो। आबादगारन चयो आहे त पाणी फराहम करे ज़राइत खे बचायो वञे।

दिल्ली जी सब का वही ए मकबूल तरीन अखबार रोजानी काविश छटी बहारू डी वरतूँ सिंध के पानी जो मसलो हो या वसीलन की मालकी रोजानी काविश हर मैदान में अगभरी रहंदे पाण मलायो रोजानी काविश सहाफत में नवा लाड़ा मुतारिफ कराईंदे सिंधी सहाफत के जदी तेज ए बातमाद बनाने में तारीखी किरदार अदा कयो रोजानी काविश पेंजो शानदार ए बेबाक सहाफत जा 36 साल कामयाबी से मुकम्मिल कया रोजानी काविश सत पारा सिंध के वसीलन हकन मिस्किन ए बेपोच मानुन ते थींदड़ जुल्मन नाइंसाफी ए बेवाजिबिन खिलाफ भरपूर आवाज उथारण वाले अजम जो वरजाओ मुख्तलिफ शहरन में काविश की सालगिरह ते केक भी काटिया व्या।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन। वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: खुशी करते।
1: सिंधी बोलिए जी सब का वही है मकबूल तरीन अखबार रोजानी काविश छटी बहारू डी वरतूँ सिंध के पानी जो मसलो हो वसीलन की मालकी रोजानी काविश हर मैदान में अकभरी रहंदे पान मलायो रोजानी काविश सहाफत में नवा लाड़ा मुतारिफ कराईंदे सिंधी सहाफत के जदी तेज ए बातमाद बनाने में तारीखी किरदार अदा कयो रोजानी काविश पेंजो शानदार ए बेबाक सहाफत जा 36 साल कामयाबी से मुकम्मिल कया रोजानी काविश सत पारा सिंध के वसीलन हकन मिस्किन ए बेपोच मानुन ते थींदड़ जुल्मन नाइंसाफी ए बेवाजिबिन खिलाफ भरपूर आवाज उथारण वाले अजम जो वर्जाओ मुख्तलिफ शहरन में काविश की सालगिरह ते केक भी काटिया व्या

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: सुबह की

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए सियानी।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सुबह की

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: Aur jab police wahan pe pahunchi, to inhone police ke upar firing kar di. People's Party ke wo log जो है वो हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की है और उस क्रॉस फायरिंग में जब एक आदमी जो है वो हलाक हो गया तो उसके बाद जो है वो पूरे शहर में खौफ-ओ-हरास फैल गया।
4: नवाज लीग जी आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करने जी दावा पीपल्स पार्टी पाबंदी मरियल तंजीम से गड हंगामा करने जो इल्जाम वफाकी वजीर अमीर मुकाम से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो त आजाद कश्मीर में चूंडू शफाफ माहौल में थियो आहन आजाद कश्मीर जे 45 सीटन मां 23 ते नवाज लीग कामयाबी मानी आहे गुजरे लीह थियल चूंडन में भी 14 सीटू नवाज लीग खटियो आहन महाजरन जे 12 सीटन मां भी 10 सीटू नवाज लीग खटियो बिन सीटन ते पीपल्स पार्टी कामयाब थी आहे दांदली जो पिटको कंदड़ 7 सीटन मां रुगो 3 सीटू खटे सघिया आहन मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी जे माण्हुनि पाबंदी मरियल एक्शन कमेटी सां गॾिजी हंगामो ऐं फायरिंग कई चौधरी लतीफ़ जे तक खे बि डिस्टर्ब करण लाइ हुननि पूरो ज़ोर लॻायो हमले जी दावा कंदड़नि मेडिकल बि न करायो आहे रुगो मुका ॾेखारण खे हमिलो चयो वियो
5: पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है एक तो खुद मैंने पहले भी कहा कि वो खैराती मैंडेट के जरिए वो इक्तदार पे आए और उसी की रवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे उन्होंने उससे बढ़ चढ़ कर जो है वो उन्होंने कार्रवाई की और उसकी मैं जो बातें कह रहा हूं ये सिर्फ एक फ्लोटिंग्स नहीं है मैं अपनी हर एक चीज को की दलील भी सामने पेश करूंगा
4: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमण नून लीग के पंजाब में वफाकी हुकूमत के फॉर्म 47 तहत मिलल खैराती हुकूमत करार दे छो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमण चयो तो पंजाब ए वफाक में नवाज लीग खैराती मैंडेट जरिए इक्तदार माणियो आहे अञा भी नवाज लीग माजी मां सिखण लाइ तैयार आना है नवाज लीग आजाद कश्मीर में दांदली कई कश्मीरन के वोट ते धाड़ो हयो वियो आजाद कश्मीर की चूंडन में 2024 ईस्वी वाली रवायत के वरचायो वियो आहे वफाकी वजीरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तकबुर ते बदल हुई है

सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर जी मुलाक़ात। ॿारनि जे वाद वेज में रुकावट जे ख़ात्मे लाइ सिंध हुकूमत ऐं वर्ल्ड बैंक जो गॾियल हिकमत अमली ते इतफ़ाक़। गिज़ाइत, साफ़ पाणी, समाजी तहफ़ुज़ ऐं ज़रात खे गॾियल फ्रेमवर्क हेठि आणण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर चयो त ॿारनि में गिज़ाई खोट इंसानी तरक़ीअ आॾो वॾनि चैलेंजिस मां हिकु आहे। ॿारनि जी गिज़ाइत बहितर बणाइण लाइ गॾियल हदफ़ ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम क़ाइमु कयो वेंदो। पंजाब जे शहर रावलपिंडीअ में बरसाति तबाही मचाए छॾी, पाणी घरनि में दाख़िल। रोडनि ते बि 3 खां 4 फुटनि ताईं पाणी बीठल, शहरी सख़्त परेशान। मेहल मां पुरस्कार नमूने गुम थियल ॿिन भेनरुनि जो पतो न पियो, वारसनि खे अगवा जो शक। बिस्मला कॉलोनीअ मां 20 वरनि जी लाइबा ऐं 18 वरनि जी रज़िया बिरोही 3 ॾींहं खां पुरस्कार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवणु आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा न आहे, नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़तमु कई वञे। खैरपुर में कार इल्ज़ाम हेठि भाउ हथां 3 ॿारनि जी माउ क़तल। मिल कॉलोनीअ में जवाबदार असद जामरी साथियुनि सां गॾिजी पंहिंजी भेण 3 ॿारनि जी माउ इरम जामरीअ खे क़तल करे फ़रार थी वियो। औरत जे मुड़ुसु आमंद अली जामरी चयो आहे त संदसि ज़ाल कारी न हुई, खेसि बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। मेहल मां मुबैना तौरु अगवा ॼाणायल 3 सहेलियुनि अगवा जी तरदीद करे छॾी। अदालत में मर्ज़ी मूजिबि हैदराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि वञण जो बयान बि ॾेई छॾियो। मुबैना तौरु अगवा ॼाणायल शागिर्दयाणी रोशनी तीवणो 161 जी बयान में चयो आहे त हू फातिमा जामरी ऐं तंज़ीला पावर मेहल मां हैदराबाद वियासीं, जितां दोस्त ॾांहुं मीरपुर ख़ासि वियासीं, जितां पुलिस हथु कयो आहे। अदालत टिनी छोकिरियुनि खे 1 ॾींहं लाइ सेफ हाउस हवाले करे छॾियो। जवाबदार ज़ैन महर 1 ॾींहं जी जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले। सिंध में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो احتجاج जारी। कंबर में बि सिंधहारी आबादगार इतिहाद तरफ़ां मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहन में ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ احتجاج। DC आफ़ीस आॾो धरणो। आबादगारनि चयो आहे त पाणी फराहम करे ज़रात खे बचायो वञे। टंडो मोहम्मद ख़ान भरिसां कबूतर चोरी जे मामले तां नौजवान गलो कपे बेदर्दी सां क़तल। ॻोठु फोटो मला में जवाबदारनि 40 वरनि जे अज़ीज़ मलाह खे गलो कपे क़तल करे छॾियो। इतलाउ ते ॻोठाणनि ऐं पुलिस पहुची लाश खे ज़री ज़मीन मां खणाए इस्पताल मुंतकिल कयो। मक़तूल जे भाउ गफ़ूर मलाह जो चवणु आहे त सौटु दोस्त अली ऐं ख़ान मलाह चोरी थियल कबूतर संदनि घर मां मिलण बाद भाउ खे क़तल कयो। पुलिस मूजिबि अज़ीज़ मलाह जो कबूतर चोरी थियण वारे वाक़े खां पोइ खेसि क़तल कयो वियो आहे। मेडिकल कॉलेजिस ऐं यूनिवर्सिटीज़ में दाख़िला लाइ MDK टेस्ट 16 अगस्त ते थींदी। IBS अखर यूनिवर्सिटी जी निगरानी में थींदड़ MDK टेस्ट जो शेड्यूल जारी। IBS अखर जे इंतिज़ामिया मूजिबि सुञाणप कार्ड समेत असुल दस्तावेज़ न आणींदड़ शागिर्द खे इम्तिहानी सेंटर में दाख़िल थियण जी इजाज़त न हूंदी। मेहड़ मां शइ वठण लाइ घरां निकिरण बाद 2 ॿारला गुम, ॻोल्हा में मदद जी अपील। जोखिया पाड़े मां 5 वरनि जो मुंतज़र ऐं 4 वरनि जी फातिमा जोखियो गुम थी वई। ॿारनि जी गुमशुदगी बाद वारिस परेशान, बी सेक्शन थाणे ते NC दाख़िल। वालदीन मूजिबि ॿार ॻोल्हा बावजूदि न मिली रहिया आहिनि।

0: निजी मंजिल लखन करोड़न लिखन खपति
1: सिंधी बोली जी सब का वडी ए मकबूल तरीन अखबार रोजानी कावश की छटरी है बहारू डिसी वरतियों सिंध जे पानी जो मसलो होजे या वसीलन जी मालकी रोजानी कावश हर मैदान में अगभराई रहंदे पान मलायो रोजानी कावश सहाफत में नवा लाड़ा मुतारिफ कराईंदे सिंधी सहाफत के जदीद तेज ए बाएतमाद बनाण में तारीखी किरदार अदा कयो रोजानी कावश पंजी शानदार ए बेबाक सहाफत जा 36 साल कामयाबी सा मुकम्मल करे वरता रोजानी कावश सत पारा सिंध जे वसीलन हकन मिसकिनन ए बेपोच माणन ते थींदड़ जुल्मन नाइंसाफी ए बेवाजिबिन खिलाफ भरपूर आवाज उथा वारे अज़म जो भी वर्जा मुख्तलिफ शहरन में कावश जी सालगिरह ते केक भी काटिया वया
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: यार ही गोडन जो सूर ए चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे हलन वेहण हर कम दुख्यो लगे थो
4: तो पोइछा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थई
3: न यार छा वाकई फायदो करे थी
4: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कैल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जज़ब थी सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाण में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल किए कजे
4: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकरे उमरे या हजते वनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा
3: वाह पोए अडी वठींदस
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजी वेजी मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो
5: हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: बोली 5-star में अंडा बुर्जी खिलाएंगी
7: कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच लेगा कि मैं उसके पीछे पागल हूँ
6: पहला
8: अजरक के रंगों से रंगी
9: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
10: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
11: It's 5:15 PM.
12: This time check is brought to you by
13: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
8: अजरक के रंगों से रंगी
9: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
10: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
5: GFM 88 Network सिंध की आवाज
14: Why not wind up the Juwali Bay?

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: वज़ीर अमीर मुकाम सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो त आज़ाद कश्मीर में चूंडूं शफ़ाफ़ माहौल में थियूं आहिनि। आज़ाद कश्मीर जी 45 सीटनि मां 23 ते नवाज़ लीग कामयाबी माणी आहे। महाजननि जे 12 सीटनि मां बि 10 सीटूं नवाज़ लीग खटियूं आहिनि। दांदलीअ जो पिटको कंदड़ 7 सीटुनि मां रुगो 3 सीटूं खटी सघिया। वफ़ाक़ी वज़ीर अता तार चयो आहे त नवाज़ लीग जी कामयाबी मुख़ालिफ़नि खां हज़म न थी रही आहे। आज़ाद कश्मीर में नवाज़ लीग सादी अक्सरियत हासिलु करे वरिती आहे। शर्जील मेमण जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इना मेमन नून लीग जी पंजाब में वफ़ाक़ी हुकूमत खे फॉर्म 47 तहत मिलियल ख़ैराती हुकूमत करार ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमन चयो त पंजाब में वफ़ाक़ में नवाज़ लीग ख़ैराती मैंडेट ज़रिए इक़्तदार माणियो आहे। अञा बि नवाज़ लीग माज़ीअ मां सिखण लाइ तयारु नाहे। नवाज़ लीग आज़ाद कश्मीर में धांधली कई, कश्मीरनि जे वोट ते दहाड़ो हयो वियो। आज़ाद कश्मीर जी चूंडुनि में 2024 वारी रिवायत खे वरिजायो वियो आहे। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि तकपुर ते ॿधल हुई। कराची में MQM जे ॿिनि धरणनि में गुज़िरियल ॾींहं खां शुरू थियल छिकताण बाद पुलिस अटाला बहादुराबाद मर्कज़ पहुची विया। MQM अॻवाननि खे पुलिस खे ऑफिस सील करण खां रोके छॾियो। शबीर क़ाइम ख़ान चयो आहे त पुलिस ज़बानी हुकमनि ते बहादुराबाद मर्कज़ सील करण आई हुई। पुलिस खां ऑफिस जी बंदिश बाबति लेटर घुरियो आहे। गुज़िरियल राति MQM जे बहादुराबाद मर्कज़ ते ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल ग्रुपनि में झेड़ो थियो हो।

हैदराबाद के इलाके हाली रोड वाले इलाके में मुड़स से कत्ल थियल अठ बारन की माओ के वारसन जो लाश रखी इहतजाज मकतूला औरत के मुड़स के गिरफ्तार करने जो मुतालबो मुंतजरीन मूजिब कुर्बान जुबेदा पसंद की शादी कई हुई खेन अठ बारन जो औलाद है कुर्बान जुबेदा के बेगुनाह कत्ल किया है खेस गिरफ्तार किया वे।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सुबह

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कराची में एमक्यूएम के बिन धड़ने में गुजरे डी का जारी छिकताण खत्म न थी। एमक्यूएम की बहादुराबाद मरकज के सील करने पौतर पुलिस के मुस्तफा कमाल बेन वापस मोटा छ। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल है काल वाले वाक़े से न ालस कुछ भी सीर नी रो है सब कुछ ठीक थी। गुजर रात एमक्यूएम की बहादुराबाद मरकज से खालिद मकबूर सिद्दीकी ए मुस्तफा कमाल ग्रुप विच में जेड़ो थो हो। अवां गाल कयो ए नवां सूबा ठही वञन इन नथो थी सके। मोहसिन नकवी अजीब गाल कई जेका असां जे समझ का बाहर आहे। वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त मोहसिन नकवी जी तकरीर बुधी आहे, समझ में नथो अचे त हू चवण छा थो चाहे। नंढनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स जो तरीक़ो आईन में ॾिनल आहे, पार्लियामेंट में बहस थियणु घुरिजे। कंहिंजी ॻाल्हि करण सां नवां सूबा नथा ठही सघनि। सूबनि जो मामिलो मुश्किल आहे, संजीदा माण्हुनि जी मुशावरत थियणु घुरिजे। कराची में जमात इस्लामी जो महांगाई खिलाफ़ मार्च शराय कायदीन ते जमात इस्लामी औरत विंग पारां मार्च कयो वियो। जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम जो सुभाणे खां समूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियूं कढण जो ऐलान। हाफिज़ नईम चयो त हुकुमरान अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयारु न आहिनि, तहरीक खे वधीक तेज़ कयो वेंदो। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी मुबैना लताड़ ऐं करप्शन खिलाफ़ मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज जारी। कमीशन ऑफिस आॾो क़ाइमु, एहतजाजी कैंप ते सियासी समाजी अॻवाननि जी आमद, मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जी तहरीक जी हिमायत जो ऐलान। शिकारपुर भरिसां पुलिस जो मुबैना मुक़ाबिलो, हिकु ॾोहारी मारिजी वियो, पंज फरार, हथियार हथ। पुलिस मूजिबि शर लाड़े वटि ॾोहारनि सां मुक़ाबिलो थी पियो। फायरिंग जी ॾे वठि दौरान हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। मारिजी वियल धाड़ेल जी सुञाणप अमीर बख़्श उर्फ़ गाढ़ो कमालाणी जतोई जे नाले सां थी आहे। फरार थियल ॾोहारनि खे बि गिरफ़्तार कयो वेंदो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सुबह

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर, मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं, और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त करेंगे। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई, और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। पीपल्स पार्टी के वो लोग जो है वो हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की है, और उस क्रॉस फायरिंग में जब एक आदमी जो है वो हलाक हो गया तो उसके बाद जो है वो पूरे शहर में खौफ खराश करी।
1: नवाज अली का जी आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करने की दावा, पीपल्स पार्टी ते पाबंदी मड़ियल तंजीम से गड हंगामा करने जो इल्जाम। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउल्लाह चयो तो आजाद कश्मीर में चूंडू शफाफ माहौल में थियो आहिन। आजाद कश्मीर के 45 सीटों में 23 ते नवाज अली कामयाबी माणी है। मुहाजिरन के 12 मां भी 10 सीटू नवाज अली खटियो आहिन। दांदली जो पिटको कंदड़ 7 सीटों में रुगो 3 सीटू खटी सकया। वफाकी वजीर अता तार चौद नवाज लीग की कामयाबी मुखालफन का हसब नती रही है। आजाद कश्मीर में नवाज लीग सादी अक्सरियत हासिल करे वरती है। शर्जील मेमन जा इल्जाम बेबुनियाद आन, अवाम तरक्की के वोट दिनो।
2: वो फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, एक तो खुद मैंने पहले भी कहा कि वो खैराती मैंडेट के जरिए वो इक्तदार पे आए और उसी की रवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे, उन्होंने उससे बढ़ चढ़ कर जो है वो उन्होंने कार्रवाई की। और उसकी मैं जो बातें कह रहा हूं ये सिर्फ एक फ्लोटिंग्स नहीं है, मैं अपनी हर एक चीज को की दलील भी सामने पेश करूंगा।
1: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन नून लीग की पंजाब में वफाकी हुकूमत के फॉर्म 47 तहत मिलल खैराती हुकूमत करा दे छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमन चयो तो पंजाब में वफाक में नवाज लीग खैराती मैंडेट जरिए इक्तदार माणो है। नवाज लीग आजाद कश्मीर में धांधली कई, कश्मीर के वोट से धाड़ो हयो वो। आजाद कश्मीर की चूंडन में 2024 वाली रवायत के वरजाया वो है। वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तकबुर से बदल हुई है।

आजाद कश्मीर की आम चूंडन के बे मरहले में भी नवाज लीग मैदान मारे वरतो। वीह तकन में 14 ते नवाज लीग कामयाब। पीपुल्स पार्टी रुगो 5 सीटू हासिल कर सकी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 तकन महाजरन के 12 सीटन से वोटिंग थी। खराब मौसम सबब 1 तक से चूंड मुलतवी कई वही। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा आजाद कश्मीर की चूंड में नवाज लीग की कामयाबी शहबाज शरीफ चीर नवाज लीग की पॉलिसी से एतमाद किया है। अमेरिका ए ईरान विच में गालियों अज थींदियों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तस्दीक कर छदी। डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान सा अज खा गालियों शुरू थी वेंदियों। आबनाय हुरमस बाबत एक मुआहिदो मौजूद है। ईरान जी एटमी हथियारन ता हथ खण वारो मुआहिदो पे हासिल कयो वेंदो। मानू मारण नथो चाहियां। खबर हुई त हमले में केतरो नुकसान थींदो।

अमेरिका सां हिन वक़्त का बि ॻाल्हि ॿोल नथी रही आहे। ओमान सां अबनह हुर्मस ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। चिकताण में घटिताई लाइ नवां ट्रैकर साम्हूं न आहिनि आया। ईरान ऐं अमेरिका विच में पाकिस्तान ट्रैकड़ी तौर किरदार अदा करे रहियो आहे। कतर बि ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे। चीन चिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल वकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वफ़द जा सभु मेंबर ईरान में ई मौजूदु आहिनि।

पंजाब के मुख्तलिफ़ शहर में तेज़ वस करण बाद सूरतहाल खराब थी वही। बरसाती पानी रोड बोड़न बाद घर में दाखिल। रावलपिंडी में बरसात तबाही मचाए छी, पानी घर में दाखिल। रोडन से भी 10 खां 4 फुटन तक पानी बीह व। कराची पुलिस जा एहलकार, पुलिस मोबाइल में स्मगलिंग कदे बलोचिस्तान में गिरफ्तार। आईजी सिंध की मुदाखलत बाद सिंध पुलिस हवाले। केस दाखिल करण बाद गिरफ्तारी भी जाहिर। स्मगलिंग में मुलविस एहलकारन की सरपरस्ती कंदड़ एसएसपी जावेद जमीरुद्दीन फारूकी भी मौतल। गिरफ्तार थल एहलकार पुलिस मोबाइल में नशे वाली सोपारियों सिगरेट और बो सामान मौजूद हो। क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन में मुकर एसएसपी जावेद जमीरुद्दीन फारूकी एहलकारन के छड़न लाय भी पहुंतो हो। एहलकारन खिलाफ दाखिल कल एफआईआर में एसएसपी और पुलिस मोबाइल जो जिक्र ना किया वो। आईजी सिंध पारा भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़न में औरत समेत 3 जना कतल। खैरपुर में भाव हथा कार इल्ज़ाम हेठ 3 बारन की माओ कतल। जवाबदार असद जामरी साथियों से गड़ भेण इरम के कतल कयो। औरत के मुड़स अहमद अली जामरी चयो है संद जाल कारी न हुई, खेस बेगुनाह कतल कियो वियो है। कोटड़ी भरसा मला बिरादरी के बिन धुरन में जेड़ो एक जनो कतल थी वियो, 8 जख्मी थी पया। टंडो मोहम्मद खान वेझो भी कबूतर चोरी ता नौजवान के कतल कयो वियो। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट की मुबिन अलताड़ करप्शन खिलाफ़ मुतासर उम्मीदवार शागिर्दन जो एहतजाज जारी। कमीशन ऑफिस आडो कायम, एहतजाजी कैंप से सियासी समाजी अगवान की आमद। मुतासर उम्मीदवार शागिर्दन की तहरीक की हिमायत जो ऐलान। मेहड़ में मुबैना तौर अगवा जानल 3 सहेलियों अगवा की तरदीद कर छी। अदालत में मर्जी मूजिब हैदराबाद मीरपुर खास वन जो बयान भी दे छो। मुबैना तौर अगवा जानल शागिर्दानी रोशनी तीवड़ो 101 के बयान में चयो है तो मां फातिमा जामरी तंजीला पावर मेहड़ में हैदराबाद व्यासी, जितां दोस्त दां मीरपुर खास व्यासी, जितां पुलिस हथ किया है। अदालत टिन्हीं छोकरन के एक ढी लाइ सेफ हाउस हवाले कर छो। जवाबदार जैन महर भी एक ढी की जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। शिकारपुर भरसा पुलिस जो मुबैना मुकाबलो, एक डोहारी मारजी वो 5 फरार, हथियार भी हथ। पुलिस मूजिब शर लाड़े वट डोहारन से मुकाबलो थो, फायरिंग की वट दौरान एक डोहारी मारजी वो है। मारजी वल धाड़ेल की सुणप अमीर बख्श उर्फ गाढ़ो कमालानी जतोई के नाले से थी है।

सिंधी बोली जी सब का वडी ए मकबूल तरीन अखबार रोजानी कावश 36 बहारू डिसी वरतियूं। सिंध जे पानी जो मसलो हुजे या वसीलन जी मालकी, रोजानी कावश हर मैदान में अकबर ही रहंदी पाण मलायो। रोजानी कावश सहाफत में नवा लाड़ा मुतारिफ़ कराईंदे सिंधी सहाफत के जदीद तेज ए बाएतमाद बनाने में तारीखी किरदार अदा कयो। रोजानी कावश पंजी शानदार ए बेबाक सहाफत जा 36 साल कामयाबी से मुकमल करे वरता। रोजानी कावश सत पारा सिंध जी वसीलन हकन मिसकिन ए बेपोच माण्हुनि ते थींदड़ ज़ुल्मन नाइंसाफ़ीन ए बेवाजिबनि खिलाफ़ भरपूर आवाज़ उथारण वारे अज़म जो बि वरजाओ। मुख़्तलिफ़ शहरनि में कावश जी सालगिरह ते केक बि काटिया विया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।